दूजै भरम भुलाई है, गुरमुख जाग रहे दिन राती, साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

देखै अहनिस ज्योत निरंतर पेखै आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया सतगुरु।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जोग

पवत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सबाया जिन

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जंको मार गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

पूर्क मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब

नवनज नाम बसया कट अंतर छोड़िया माया कालाहा हे। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक ना होई एक ते आयन।

आनंदन गुण रगद रहै दिन राती, आनंदन गुण रहै दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरहै सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर

सच कमावै, इह मन निर्मल जे हर गुण गावै। इस दिख महि अमृत प्राप्त होवै, हर जीव मेरे पाया। जिसनु बुझाए सोई बुझै, हर गुण गावै अंदर सूझै।

कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा उठ है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया काया सुध है शब्द विचार।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम पहो भागै।

गुण निदान मन तन महरविया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा।

साद उस्तत निंदा दौ विवर्जित तजहो मान अवधाना उस्तत निंदा दौ विवर्जित तजहो मान अभिमाना लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवाना।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन भगत

जिसका तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तैं भरपूर, तू जल थल महियल।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा

नहीं रहाओ। गुर सिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख घणे।

पंजवां जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन्हें उपाए तिसको पीर गुरु गोबिंद जी कै काम हलत पलत जा की सद शाम रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत मीत ही

अंतर वस्त दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए। जिस मस्तक कर्म लिखया ललाट, जिस मस्तक कर्म

निज घर वासी हम सुख पाया ता सब है सुहेले गुर पूरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते ऊचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सद ही निचल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमारी।

आओ। तब बुझी पूर्ण सवयासा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा, अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट पहे गोपाल, तां कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूढ़ मुग्ध किस बुझे नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

जिस नाम हृदय तिस वट परवारा, नाम बिना मन मुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निहचले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहाओ।

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रहे।

गुरमत खोज परे तब पकरे तन साब तरास उबरया। पाखंड परम उपाव कर थाके हृदय अंतर माया माया साधु।

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ पुन

मेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कह आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

कुबजा उधरी अंगुष्ट धार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मिले जिस सतगुरु

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त होहे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिना सुख सुपने पी नाही जन नानक।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

आई तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै। मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावे, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जग तरावे रहाओ, जो गुर पौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावे, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावे, परम भूले।

मन बिगसै हौ तिन कह सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलहु दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै

एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवै निद पाई, उदौत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई, सुख उपज

कान हर बरस सगल जग छाया, पहे कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

सार्थक है। साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं

उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नहें।

ਰਹਿਤ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जाने ओ कब कल सुजा।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने जप।

श्रवण ता पर सकियाथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै, सकियाथ सो ही यो जित ही बसै, गुर अमरदास निज जगत पे।

अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमतना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास। गुर

पुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेहनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन।

हरका नाव अत बड़ ऊंचा, ऊंची हूँ ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सौ लोचै कोई। मुख संजम हच्छा ना हो वई,

सतगुर पुरख हर ध्यादा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेम दे हर मेले गुर मेलाए एहो भौज।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

द्वार नानक एवें जानिए सब आपे सच्यार खापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंतर।

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी। जेती सिर्ठ उपाय वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी। गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जग कीरत जगले। जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण को।

जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुरी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दाप जाने कौन कूट की ताप साओ एको कवाओ सिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुबा वैसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पस्तार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पख खाए असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन पीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत न देखन सुनन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाए ताके अंत न पाए जाए एहो अंत न जाने को।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

भांति रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत किंथा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दुर कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होए लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एक राय पत पवड़िया चढ़िए हुए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े फीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती छित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के

कौन पंत परवान, नदरी करम पवे निशान, कछ पकाई उठे पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पौन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे कार्त करिए, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पाप नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिते नाद विनोद कोड आनंद, धर्म खंड की बाणी रूप, तिथे कार्त करिए बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरा सिदा की सुद, कर्म खंड की बाणी जोर,

जेवड आप तेवड तेरी दात। जिन दिन कर कह की ती रात, खसम विसारे ते समझात। नानक नामे बाज सनात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम चीरे किरम सतगुर सनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर करया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोसा, पिस्ता से बचरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर कल दरिया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरिया। रागासा में

पुरुष निरंजन हर पुरुष निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरुष अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वर्ते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सिरस सब उपाय जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिनको ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आशीषड़िया जो होवे साहिब त्यों मेल कर

छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, हो कर राख वडाई तोए। रहाओ रित्वे चस्या घड़िया पहरा, थित्ती वारी माओवा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेश। राग तना श्री मैला पहला, गगन में थाल रव चंद। दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, रूप मल्यान लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूल अंत ज्योति, कैसी आरती होए। पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी। रहा सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो, सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस पावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारं को, होए जाते तेरे नाए वासा। रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परया। मिल साधु खंडल खंडा है, पूरब लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुन वड्डा है। कर दंडौत पुन वड्डा है, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया। तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे। जम काल सह सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण पव खंडा है, अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब।

आओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखिया।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना। सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पू

चंद सूरज दोई गुफै न देखा, सुपने सौन न खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज ताए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुस्सा कटिया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।